हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल है। लीजिए सुनिए आलोक गांगुली के स्वर में ब्रह्मानंद की ये रचना, सुनो सुनो ध्यान से प्यारा।

0: नकारा सुनो सुनो ध्यान से प्यारा ओ बागत को नकारा सुनो सुनो ध्यान से प्यारा।
1: आप सुन रहे थे भारतीय संगीत का रागम डीटीएच चैनल, हर पल हर दिन भारतीय संगीत।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको सुनाएंगे पंडित दीनानाथ मिश्रा का ख्याल. राग है बैरागी भैरव. इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं हिरणमोय मिश्रा.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल फॉलोड बाय अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. लिसन टू अ ख्याल इन द राग बैरागी भैरव. Our artist is Pandit Dinanath Mishra. Accompanying him on the tabla is Pandit Sujit Saha, and on the harmonium is Hiranmoy Mitro.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप पंडित दीनानाथ मिश्रा से बैरागी भैरव पर ख्याल सुन रहे थे। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर थे हिरणमोय मिश्रा। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको राग बैरागी पर गोपाल चंद्र पाल से सुनवाएंगे रुद्र वीणा। इनके साथ पखवाज पर हैं परबाल नाथ।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग बैरागी भैरव। आवर आर्टिस्ट वॉज पंडित दीनानाथ मिश्र। अकम्पनिंग हिम ऑन द तबला वॉज पंडित सुजीत साहा एंड ऑन द हारमोनियम वॉज हिरणमोय मित्रो। This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a Rudra Veena recital. Listen to the Rudra Veena in the Rag Bairagi. Our artist is Gopal Chandra Paul. Accompanying him on the Pakhavaj is Probal Nath.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत रुद्र वीणा पर राग वैरागी सुन रहे थे। कलाकार थे गोपाल चंद्र पाल और पखवाज पर इनका साथ दे रहे थे परबाल नाथ। ये हमारे आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a Rudra Veena recital in the rag Bairagi. Our artist was Gopal Chandra Paul. Accompanying him on the Pakhavaj was Prabal Nath. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

ಮಗ ಗಮ್ಮ

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, आपने ट्यून किया है रेडियो चैनल रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. आप सभी का कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं. सुनते हैं मिश्रवाद्य संगीत. मिश्रवाद्य संगीत के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं पंडित राम नारायण के सारंगी वादन से. आपने प्रस्तुत किया है राग मारुबिहाग, विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है. सुनते हैं पंडित राम नारायण का सारंगी पर बजाया हुआ राग मारुबिहाग.

श्रोताओ, हम सुन रहे थे पंडित राम नारायण का सारंगी वादन, राग था मारू बिहाग। मिश्र वाद्य संगीत का ये कार्यक्रम जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं पंडित उल्लास बापट का संतूर वादन, राग रागेश्री। विलंबित गत जप ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। सुनते हैं पंडित उल्लास बापट का संतूर वादन, राग रागेश्री।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे पंडित उल्लास बापट का संतूर पर बजाया हुआ राग रागेश्वरी। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग नटभैरव में आलाप जोड़ और झाला. विलंबित और द्रुतगत तीन तालमनी बद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है हसीन अहमद खान ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ सितार रिसाइटल बाय सुनीरा कासलीवाल. She is accompanied on the tabla by Haseen Ahmed Khan. You will first listen to Rag Nat Bhairav, in which you will hear Alap, Jod and Jhala, followed by Vilambit and Drutgat set to Teen Tal.

0: अभी आप सुन रहे थे सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग नट भैरव। तबले पर आपकी संगति की थी हसन अहमद खान ने। और लीजिए अब सुनिए राग शुद्ध सारंग में आलाप। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है हसीन अहमद खान ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग नट भैरव। सुनीरा कासलीवाल नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग शुद्ध सारंग in which you will hear the alap followed by vilambit and drutgat set to teen taal.

0: अभी आप सुन रहे थे सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग। तबले पर आपकी संगति की थी हसीन अहमद खाने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग शुद्ध सारंग वी कम टू द एंड ऑफ द सितार रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय सुनीरा कासलीवाल। She was accompanied on the tabla by Haseen Ahmed Khan. This program was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो चैनल रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. आप सभी का कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं. सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत. इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं सुलभा पिशवीकर की गाई हुई मिश्रा किरवाणी में बंदिश की ठुमरी से. आपके साथ तबले पर है धनंजय करवंडीकर, हारमोनियम पर है शरद सिधये. सुनते हैं मिश्रा किरवाणी में बंदिश की ठुमरी, कलाकार सुलभा पिशवीकर.

श्रोताओं, हम सुन रहे थे मिश्रा किरवाणी में बंदिश की ठुमरी। कलाकार थी सुलभा पिशवीकर। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे शरद सिधिये और तबले पर थे धनंजय खरवंडीकर। श्रोताओं, आइए इसके बाद सुनते हैं दिग्विजय वैद्य की गाई हुई मिश्रा गावती में ख्याली ठुमरी, सजना घर मेरे। ताल आधा तीन ताल। आपके साथ तबले पर है रोहन चिंसोरे, हारमोनियम पर है उपेंद्र सहस्रबुद्धे। सुनते हैं मिश्रा गावती में ख्याली ठुमरी, कलाकार दिग्विजय वैद्य।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे मिश्र गावती में ख्याली ठुमरी। कलाकार थे दिग्विजय वैद्य। आइए इसके बाद सुनते हैं दिग्विजय वैद्य का गाया हुआ मिश्र पीलू दादरा। बोल है हटो हटो सैया।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे दिग्विजय वैद्य का गाया हुआ मिश्र पिलू दादरा। उपशास्त्रीय गायन के अंत में आइए आप सुनते हैं सुलभा पिशवीकर का गाया हुआ भैरवी दादरा। आपके साथ तबले पर है धनंजय खरवंडीकर और हारमोनियम पर है शरद सिधिये। सुनते हैं भैरवी दादरा, कलाकार सुलभा पिशवीकर।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे भैरवी दादरा, कलाकार थी सुलभा पिशविकर। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग जयजयंती और राग माझ खमाज में सितार वादन. आज के कलाकार हैं पार्थो बोस. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पार्थो मल्लिक. पार्थो बोस अपने सितार वादन का आरंभ राग जयजयंती में सितार वादन से कर रहे हैं. तो आइए सुनते हैं राग जयजयंती में सितार वादन, कलाकार पार्थो बोस.
2: This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. This evening we present Hindustani Instrumental Recitals. Listen first to a sitar recital in the rag Jai Jayanti. Our artist is Partho Bose. Accompanying our artist on the tabla is Partho Mullik. Listen now to the sitar in the rag Jai Jayanti. Our artist Partho Bose.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जय जयंती में सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पार्थो बोस। पार्थो बोस अपने सितार वादन का समापन माझ खमाज धुन से कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये माझ खमाज धुन सितार पर। कलाकार पार्थो बोस।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Jai Jayanti by our artist Partho Bose. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, Partho Bose now presents a Majh Khamaj Dhun. Accompanying him on the tabla is Partho Mullik. Listen now to a Majh Khamaj Dhun. Our artist Partho Bose.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सितार पर माझ खमाज धुन सुन रहे थे। कलाकार थे पार्थो बोस। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पार्थो मल्ले। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a Majh Khamaj dhun by our artist Partho Bose. Accompanying him on the tabla was Partho Mullik. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

Bunny,

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में ध्रुपद गायन. कलाकार हैं विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर. राग है भैरव. इसमें आप सुनेंगे आलाप, जोड़ और एक रचना जो चौताल में निबद्ध है. बंदिश के बोल हैं विष्णु चरण जल ब्रह्म कमंडल. संगत कलाकार हैं पखावज पर पन्ना लाल उपाध्याय. ये रिकॉर्डिंग वर्ष 1979 में की गई थी. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग भैरव. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय पन्ना लाल उपाध्याय ऑन द पखावज. दिस वॉज रिकॉर्डेड इन द ईयर 1979.

अब आप सुनेंगे राग रामकली में धमार, बोल हैं एरी आली भाई भोर, कलाकार हैं विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर. नाउ लिसन टू अ धमार रेंडिशन इन द राग रामकली बाय विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर.

आप सुन रहे हैं विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर का गायन। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर का गाया राग खमाज में आलाप, जोड़ और एक रचना जो चौताल में निबद्ध है। बंदिश के बोल हैं मायरी बरजो न मानत। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स राग खमाज।

अभी आप सुन रहे थे विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर का गायन। संगत कलाकार थे पखावज पर पन्ना लाल उपाध्याय। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय विदुषी डॉक्टर सुमति मुटाटकर। द कंप्लीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय पन्ना लाल उपाध्याय ऑन द पखावज। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन अनवरत भारतीय संगीत. आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुभाषा मिश्रा का वायलिन वादन. सर्वप्रथम प्रस्तुत है सुभाषा मिश्रा का वायलिन पर बजाया राग जौनपुरी. मध्य लय और द्रुत लय तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्रा.

अभी आप सुन रहे थे सुभाषा मिश्रा का वायलिन पर बजाया राग जौनपुरी। अब प्रस्तुत है इन्हीं का वायलिन पर बजाया राग झिंझोटी। विलंबित रचना तीन ताल और द्रुत रचना झप ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्र।

अभी आप सुन रहे थे सुभाषा मिश्रा का वायलिन पर बजाया राग झिंझोटी। सुभाषा मिश्रा अपने कार्यक्रम का समापन वायलिन पर बजाए राग मिश्र भैरवी से कर रही हैं। तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्र।

अभी आप सुन रहे थे सुभाषा मिश्रा का वायलिन पर बजाया राग मिश्र भैरवी, तबले पर संगत कर रहे थे प्रमोद कुमार मिश्र। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र के सहयोग से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है काकुली मुखर्जी की गाई ठुमरी. बोल हैं जाओ वही तुम श्याम. तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अख्तर हसन ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट फॉर यू अ वोकल रिसाइटल बाय काकुली मुखर्जी. शी इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय उस्ताद अख्तर हसन. शी फर्स्ट प्रेजेंट्स अ ठुमरी इन खमाज़.

0: अभी आप काकोली मुखर्जी की गाई ठुमरी सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए दादरा बोल हैं अजहू न आए हमरे सैया।
1: यू जस्ट हर्ड अ ठुमरी इन कमाज। लिसन नेक्स्ट टू अ दादरा।

0: अभी आप काकुली मुखर्जी का गाया दादरा सुन रही थी। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद अख्तर हसन ने। और लीजिए अब सुनिए दादरा बोल है मोरे बलमुआ नहीं आए। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अख्तर हसन ने।
1: यू जस्ट हर्ड अ दादरा बाय काकुली मुखर्जी। कंटिन्यूइंग विद हर वोकल रिसाइटल शी प्रेजेंट्स अनदर दादरा।

0: कार्यक्रम के आखिर में सुनिए काकोली मुखर्जी का गाया दादरा, बोल हैं शाम तोहे नजरिया लग जाएगी। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अख्तर हसन ने।
1: यू जस्ट हर्ड अ दादरा सॉन्ग बाय काकोली मुखर्जी। शी कंक्लूड्स हर रिसाइटल विद अनदर दादरा।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं एक मराठी पारंपरिक भक्ति रचना से। स्वर है शाहिर मनोहर विठ्ठल वलंजू और सहकारी।

शाहिर मनोहर विट्ठल वलंजू और सहकारियों के स्वर में यह पारंपरिक रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं पूर्णिमा पटवर्धन से संत तुकाराम महाराज की ये मराठी भक्ति रचना।

पूर्णिमा पटवर्धन के स्वर में संत तुकाराम महाराज की मराठी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की ये रचना, सीताराम कहो राधे श्याम कहो।

घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं राधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की ये रचना।

राधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की ये रचना अभी आपने सुनी। संत कबीरदास की एक रचना प्रस्तुत है, स्वर है विजय सिंह का।

विजय सिंह के स्वर में संत कबीर की रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं एक सिंधी भक्ति रचना। स्वर है जय श्री बत्थीजा का।

ओंकार प्रभु घाटे के स्वर में संत अमृत राय की ये मराठी भक्ति रचना आपने सुनी। कार्यक्रम में अब एक गुजराती रचना प्रस्तुत है, स्वर हसमुख मंडालिया का।